और मतिस नु अगली वजू पे धूड़ा खाए। कसमै करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए, वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए। जिस दा दिता खावना तिस कहिए साबास, नानक हुकम चले नाल।

गया ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

काका हंस सरतार सिंह जी विरक लंगरा लई बेंत माया आदर कर दे परिवार विच सुख शांति देह अरोगता चढ़ दी।

हे निमान देव मानस सदगुरुनी तवन दे तारनी उठिया दी उठ नियासरा दे आसरे गुरु गरीब निवास जी आप जी दे हजुर विच कीर्तन करदे हां नियास बदे बेटा जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिना जिना मैं पयो लो सबद बेटा जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी सबना दिल के लावणे चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत्ता भला सिखो सबद प्यारियो जर मर किटे मुकुजल सदा सुखे नानक सिमरत इकराम कलि मोहल्ला।

दर्शन प्यासी दिन सरात चितवाओ अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया ते सम्मोहन लाल प्यारे हाओ फिराओ

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पहरो वह करही पंच रागनी संग उच रही प्रथम पहरवि बिलावली पुनिया की गावे मंगली पुनस लेखी की भई बारी ए पहरों की पांचों नारी पंचम हरक

एक श्री छंद अजय अलै भै भै भू अजू अनास कास अगंज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम गाह डाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अभरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे।

दानंग सतरंग प्रणासी करी मुलक निंदा समस्त निवासी अजाय भेभूते गजाय गनी मे हरि अंकरी मुल रही मे चात्र जगरवर्ती चात्र भुगते स्वयं भाव सुभंग सर्वदा।

हस्त कीट के बीच समाना, राव रंग जय एक सर जाना, अदमय अलख पुरग अवगामी, सब घट घट के अंतर जामी, अलग रूप अच्छा अनभेखा, राग रंग जय रूप ना रेखा, बरन चैन सब होते न्यारा, आद पुरग अदमय अभिकारा, बरन चैन जय जात न पाता, सत्र मित्र जह तात न माता, सब ते दूर सबंते नेरा, जल थल महियल जाहे बसेरा, अनहद रूप अनाहद बानी, चरण शरण जय बसत भवानी, ब्रह्मा विषण अंत नहीं पायो, नेत नेत मुख चार बतायो, कोट इंद्र उपेंद्र बनाए, ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए, लोग चतर दत खेल रचायो, बहर आप ही बीच मिलायो, दानव देव फनिंद अपारा, गंधर्व जाच्छ रच सुभचारा, भूत भवे के भवान कहानी, घट घट के

सबहु सर्व ठार पहचाना, काल रहतन काल स्वरूपा, अलख पुरख अवगत अवधूता, जात पात जह चेहना बरना, अवगत देव अक्षय अनभरमा, सबको काल सबन को करता, रोग शोक दोकन को हरता, एक चेत जह एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। तो प्रसाद कबित कत हूँ सुचेत हो के चेत ना को चार कियो, कत हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो, कत हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भी, कहूँ माँ दान हो के मांगे धन देत हो, कहूँ माँ राजन को दीजत आनंदन, कहूँ माँ राजन ते छीन छेत लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जात गंधर्व उरक, कहूँ विद्याधर, कहूँ भय किन्नर पिशाच, कहूँ प्रेत हो, कहूँ होय के हिंदा हिंदुआ गायत्री को गुपत जपे हो, कहूँ होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूँ कोब का होय के पुराण को पढ़त मद, कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो, कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो, कतहूँ विचार विचारत को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ शास्त्रधारी, कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारत हारी, कहूँ नार के निकेत हो, कहूँ देववाणी, कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मिटानी, कहूँ श्याम, कहूँ सेत हो, कहूँ धर्म धामी, कहूँ सर्व ठौर गामी, कहूँ जति, कहूँ कामी, कहूँ देद, कहूँ लेत हो, कहूँ बेदरीत, कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जटाधारी, कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी, कहूँ साधना करत हो, कहूँ कान फारे, कहूँ डंडी होय पदारे, कहूँ भूक भूक पावन को पृथ्वी पर धरत हो, कतहूँ सिपाही हो के साधत सिलाहन को, कहूँ क्षत्रिय के अर मारत मरत हो, कहूँ भू भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो, कहूँ गीतनाद के निदान को बतावत हो, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो, कतहूँ पयुग हो के पीवत पीवावत हो, कतहूँ मयुग कहूँ मद पान हो, कहूँ मासूर हो के मारत मवास

कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन पर्यंक कहूँ शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतत कुकरम कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पवन हरि कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छत्रधारी कहूँ छाला धरे छल भारी कहूँ छक्केवारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजया कहूँ नृत्य के नचा कहूँ नर को आकार हो कहूँ वेद वाणी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजया कहूँ धेन के तरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दो की निरंकार हो निर्जोर निरूपों के सुंदर स्वरूपों के भूपन के भूपों के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की दो मानी महामान हो विद्या के विचारों के अद्वैया अवतारों के शुद्धता की सूरतों के शुद्धता की शान हो जोबन के जालों के कालों के कालों के सतरन के झूलों के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्म पाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नान को ननाद कहूँ पूरन भगत हो कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वालासी जगत हो पूरन प्रताप कहूँ इकांति को जाप कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगत हो कहूँ बार दे कहूँ छाल सिंह छिनाए ले सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर घर जोग जति के सूर सुराधन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रत्ती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूपली बन न्यावशीसना ज्ञान विचारे एते भय तो कहाँ भय भूपदान को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजा ढोल मृतांग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसति है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपद कौन कने नई जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहान दे आदम दान सो संजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेख है पौन हार जति जंधार सब सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है शोध सुपा दुरंत सो सास सुना दुर्जान दलांगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े आर विचार सार की धार बछैया तोर देश मलिन मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ाने के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नाग जाचन एक सुख दिवैया दानव देव फनी निशाचर भूत भगवान जपेंगे जीव जीते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाय धुन पापन के पुंज खपेंगे साल समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र राधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान स्वयं पर साज भरेंगे ब्रह्म सर भीषण सचिव अदंत फसे जम फांस भरेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन बूंद के बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास की अभिख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो वैद बितायो साचे कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तेन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लखियो हरावाची दिशा में है काहू पछाह को शीस निवायो को उबतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन धायो पूरा क्रिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो
ਤੋਬਰਸਾ ਤੋਮਰ ਛੰਦ ਹਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਹੀਨ ਦਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਕਲੰਕ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਅਨਛੇਜ ਤੇਜ ਉਦਾਰ ਅਨਭੇਜ ਰੂਪ ਦੁਰੰਤ ਸਭ ਜਗਤ ਭਗਤ ਮਹੰਤ ਜਸ ਤਿਲੰਕ ਭੂ ਭ੍ਰਿਤ ਭਾਨ ਦਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਿਧਾਨ ਅਕਲੰਕ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਸਭ ਲੋਕ ਸੋਗ ਵਿਤਾਰ ਕਲ ਕਾਲ ਕਰਮ ਵਿਹੀਨ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਨਖੰਡ ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਥਾਪਿਓ ਜੈ ਥਾਪ ਅਨਖੇਦ ਭੇਦ ਅਛੇਦ ਮੁਖ ਚਾਰ ਗਾਵਤ ਬੇਦ ਜੈ ਨੇਤ ਨਿਗਮ ਕਹੰਤ ਮੁਖ ਚਾਰ ਬਕਤ ਬੇਅੰਤ ਅਨਭਿਜ ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਨਖੰਡ ਅਮਿਤ ਥਾਪ ਜੈ ਕੀਨ ਜਗਤ ਪਸਾਰ ਰਚਿਓ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾ ਖੰਡ ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜੈ ਅੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੀਨੇ ਸੋ ਚੌਦਾ ਖੰਡ ਸਭ ਕੀਨ ਜਗਤ ਪਸਾਰ ਅਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਉਦਾਰ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਨਿਪਾਰ ਕਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਸੂਲ ਬਿਨ ਭਗਤ ਕੋ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਹਿ ਸਿੰਧ ਬਿਨ ਨਗੇਂਦਰ ਕਹਿ ਮਚ ਕਜ ਫਨਿੰਦਰ ਕਹਿ ਦੇਵ ਆਦਿ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਇੰਦਰ ਬਾਰ ਬੁਹਾਰ ਕਹਿ ਬੇਦ ਅਮੁਖਚਾਰ ਕਹਿ ਰੁਦ੍ਰ ਸ਼ੁਦ੍ਰ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਨੂਪ ਕਹਿ ਕੋਪ ਕਾ ਭਣੰਤ ਕਹਿ ਬੇਦ ਭੇਦ ਕਹੰਤ ਕਹਿ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਵਖਾਨ ਕਉ ਕਤਦ ਹਿਸੋ ਪੁਰਾਨ ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਰੰਤ ਕਈ ਉਰਦ ਤਾਪ ਦੁਰੰਤ ਕਈ ਉਰਦ ਭਾਵ ਸੰਨਿਆਸ ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਭੇਸ

खू कमल हरी गज गद हाबी बुद्ध हरी के दुआ मसान वास करोई करत हैं। घुगुमट वासी लगे डोलत उदास मृग तरवर सदी मोन सदे ही मरत है। बिंद के सदैता हीर की बड़ैया देत बंदरा सदी उपाय नंगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के भीन छीन कैसे के तरत है। भूत बन चारी छेद छौना सभ्य दूताधारी पवन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया धन लोभ के तजैया दे तो गौवन के जैया वृग भैया मानियत है। नव के उड़ैया ताए पंछी की बड़ैया दे बगला बिडाल ब्रेक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना है ऐसे ना प्रपंच मन भूलानियत है। भूम के भसैया ताए भूचरी के जैया कहे नव के उड़ैया सो सिरैया के बखानी है। फल के भचैया ताए बांधी के जैया कहे आदित फिरैया दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आके भचैया सो चकोर सम्मानी है। सूरज सिवैया ताए कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि पहचानी है। नारायण कच्छ में तेंदुआ कह सब कौल नाभ कौल जय ताल में रहते हैं। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन जारी रिखी के नाम के महंत लही अत है। माधव भवर ओटे रुको कन्हैया नाम कंस को बदैया जम दूध कही अत है। मूड रूट पीटत ना गुड़ता को भेद पावे पूजन ताहे जाके राखे रही अत है। विश्ववाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काल भोग प्या देह पर सहत है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठाडे न बहत है। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद भेद अकतेव नेत नेत के कहते हैं। नाचत फेरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे वही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गय एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के दे वेद और पुराण के दे सिमरत समोन के होए होए बिताए है। मोंदी मदार के दे अंसनी कुमार के दे अंसावतार के दे कालबद्ध भय है। पीरा पैगंबर के ते गने ना परत ते भूमि ते कोई फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कहीं कोसलो चलते है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही पाओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूमंत भूम में मिलते हैं। सिद्ध दे करे अनेक तोपची कपड़ भेष पोस्ती अनेक दा निवावत है शीश का कहा भयो मल जो पकड़ दे अनेक डंड सोतना डंडा दस टांग तीस का कहा भयो रोगी जब डारो रहे।

शीश पटकत जाके कान में खजूरा दसे मूंड छटकत मित्र पुत्रों के शोक सा आग को बचरैया फल फूल को बचैया सदा भन्न को भ्रमैया और दूसरो न भोग सा कहा भयो भेड़ जो घसा सिर वृक्षण सो माटी को बचैया बोल पूछ लीजिए जोग सा कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा नाचोई करत मोर दादर करत सोर सदा घन घोर घन करोई करत है एक पाए ठाटे सदा वन में रहत ब्रिज फूक फूक पाँव भू श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठार बास करे काग और शील देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न हुजे लीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो गया बैरागी बने कब हूँ संन्यास भेद बन कर दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे धारी दंड कहूँ दंड धारियों के लोगन भ्रम आवई कामना अधीन परे नाचत है नाचन सो ज्ञान के भीन कैसे भ्रम लोग पावई पंच बार गीदर पुकारे परे शीत काल गुंचर गदहा अनेकदा पुकार ही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो कांसी भी ची ची चोरठा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फास ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पे पाई है तापना तापना अनेक तन घायल सहते है जाप के किए जो पे पाई है जाप देव कूदना सदी तुही उच्च रहते है नव के उड़े ते जो पे नारायण पाई अनकल नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाई अनल आकाश पंछी डोलबो करते है आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के वासी की भुजंग न तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जतियन मानबो हिंदू तुरा को रावजी मान सभी मानस की जात सब के पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम वोई दूसरो न भेद को भूल भ्रम मानबो एक ही सेव सब ही को गुण देव एक ही स्वरूप सब के जो जानबो देव राम आशीष होई पूजा अनिवाज होई मान सब एक बयान एक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे हो देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक दान के बाद खाक बाद आत सो आपको रलाओ है अल्लाह भेग सोई पुरान और कुरान होई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है जैसे आगते कनुका गोड आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूरते अनेक धूर पूरत है धूर के कण का फेर धूर ही समाएंगे जैसे एक नत्ते तरंग को डूब जाते पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूपते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते ऊपर सब ताही में समाएंगे केते काछ मज के दे उनको करत भच्छ केते अच्छे बच हुए सपच्छ उड़ जाएंगे केते ना बीज आज पाज को करेंगे भज केते प्रत्यज हो बचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे तेज यू तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते ऊपर सब ताही में समाएंगे कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है केते गंगवासी के ते मदीना मक्का निवासी के ते उदासी की भरमाए फिरत है करवा सहद के ते भूम में गड़त के ते सुहा पे चढ़त के ते दुखा भरत है ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के बिहीन जग जारी मरत है शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहने चढ़ाए हारे लाभसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पज हरे पंडित तपंत हरे तापसी तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जनमंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा बाता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं न अवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग जूनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे
परे अंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आदत वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे। किते कृष्ण से कीट कोटा उपाए उसारे गड़े फेर मेटे बनाए। अगाधे अभय आदे अद्वै विनाशी परे अंग परापरन पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छ विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वरणंग ना व्यादे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे। ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग अभूतंग अभेकंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अछे आदत व अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वरणंग ना व्याधंग ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग। ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भर्मंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना गर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भर्मंग सदैवंग सदा सिद्ध वृदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अछे आद अविक्ते अथापे विमुक्तंग अछे आद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे। ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परे अंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भर्मंग ना सर्मंग ना साके ना भर्मंग ना चर्मंग ना कर्मंग ना बाके ना सत्रंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद्रुपे नमो आद्रुपे। कहूं कांज के मंज के धर्म भूले कहूं कांज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाजतामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चेतर रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं ने गृहं कहूं देह दोखं औखदि रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साध की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग युक्तं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं को की काम कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं शुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव्य रूपं कहूं चेष्टाचार चितंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेकं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जनारा देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग्रेहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागंग कहूं रोग हरता कहूं भोग त्यागंग कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आर भी तोर की पारसी हो कहूं पैल भी पस्त भी संस्कृति हो कहूं देद भाग्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाग्य कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारू गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं शैल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजा धीराजाधिकारी कहूं राज साजंग धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछे आद अद्वै विधाता ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते। तो प्रसाद पादरी छंद अभ्यक्ते जन भव प्रकाश अच्छा स्वरूप में अनास अन तुट तेज अन खुंड भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अन भूते अन छेद गाद करता सदी हरता सनात आसन ढोल अन भूत कर्म दाता दयाल अन भूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योत जय जात पार नहीं सत्र
पवित्र जय ने गे ने चंचित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम फेक जय करम भरम नहीं जात पात नहीं ने गे ने पितृ मात जय नाम थाम नहीं बरक ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र सात जय त्रासवाद नहीं दे ना जय आदंत नहीं रूप रात जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आद नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत बे जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन अटोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प एक साधंत तुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तथा पावत न पार कई उर्द पादेशन भ्रमंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद कई कोप काद कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत कोट मृत गो आहार कई करत साग पै पत्र भक्ष नहीं तदम देह होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग आद करम कहूं अगन होत्र कहूं तीरा धर्म कई देद भाखा रटंत कई देद विद्या पढ़ंत कई करंत भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरा तीरथ भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव कर्म कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायत न पार कहूं राजरीत कहूं जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सो कर्म निवली आद कर्म कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मक्खो बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार कहूं करत जज गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमृत उचार कहीं भजत एक भग निराधार कई नेह दे कई गेह वाद कई भ्रमर देश अनुदान कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पम प्रजन नहीं तदत तस पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदम देश देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्वधर्माभिहीन साबरसा तोटक छंद जय जंप हो जुगण जुह जुअन भय कंप हो मेर पयाल भुवंग तप सर्व जलेर थलंग थन इचरत कुंद्र इंद्र कुमेर बलंग अन खेद सरु अभेद अभयंग अन खंड अभूत छेद छियंग अन काल पाल रियाल स्वंग जय ठटिय मेर काज भुवंग अन खंड अमंड प्रचंड रंग जय रचियंग देव अदेव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय रागना रूपना रेख रुखंग जय तापना सापना सुहाग सुखंग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय खेदना भेदना छेद छयंग जय जातना पातना माध पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय रागना रेखना रोग भणंग जय द्वैखना दागना दो गणंग जय अंडा ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रसाम तेज अतेज कियो अनुभव पाद आ प्रचंड लियो श्रिय सिंदर विंद नगिंद नगन श्रिय श्रिय जाच्छ गंधर्व फणिंद भुजंग रच रोज देव देव रच देव अदेव भेव नरंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड तज भुजंग किए देव अदेव सराज पितंग अन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो दुचंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय जम्पा किन्नर जाच जुवंग ना ना नपुंसक जाय किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गजबाज रथाधिक पांच गण भूत भोग भवान तुवंग जय अंडज सेतर जय रजन रज भूम कांत पताल जलंग रज पावक पान प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भो मेर का निवाचितंग रज रोज का द चंद्र मृतंग दुत चंद दिनी सा दीप दई जय पावक पान प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड लिए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक छत्र चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अन धूत अभूत अशूत मतंग अन गाद अभ्याद नाद गतंग अन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार छत्र चक्र फिरंग जय रागना रंगना रेग रुखंग जय सोगना भोगना जोग जुगंग भो भंजन गंजन आद सिरंग जय बंदा देव अदेव नरंग गण किन्नर जय भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज मृतंग जय पारना पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय पद वेद पुराण सभा
ਜੈ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਆਨੰਦ ਕਹੈ ਜੈ ਭੂਤ ਅਭੂਤ ਨਾ ਭੇਦ ਲਹੈ ਜੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਵ ਜਪੈ ਸੋ ਸਿੰਧ ਅਦੋ ਮੁਖ ਤਾਪ ਤਪੈ ਕਈ ਕਲਪਨ ਲਾ ਤਬ ਤਾਪ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਨਹਿ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਪਾਨ ਪਰੈ ਜੈ ਫੋਕੜ ਧਰਮ ਸਜੈ ਤਬ ਤਜ ਹੈ ਜੈ ਫੋਕੜ ਧਰਮ ਸਵੈ ਤਜ ਹੈ ਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਕੋ ਜਪ ਹੈ ਤਿਵ ਆਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰੈ ਭਾ ਭੂਲ ਨਾ ਦੇਹ ਪੁਨਰ ਧਰ ਹੈ।

श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार। दोहरा कह जीतम का मरण है, कवन सुर कह नरक वो सुगड़ा को मूर्ता, कहा तरग तरक दोहरा को निंदा जत है, कवन कवन पाप का धर्म, कवन जो को भोग है, कवन कर्म अब कर्म। दोहरा कहो सुसम का सो कह दम को कह कहंत को सूरा दाता, कवन कहो तंत को मंद दोहरा, कहाँ रंग राजा कवन हरक शोक है, कवन को रोगी रागी, कवन कहो तत मोह तवन दोहरा। कवन श्रेष्ठ को पुष्ट है, कहाँ श्रेष्ठ को विचार, कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार। दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है।

तब प्रसाद दीरक तिर भंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर विहंदन दुष्ट निकंदन आदवृते चंद्रासुर मारण पते दुधारण नरक निवारण गुड़ गते अक्षय अखंडे तेर प्रचंडे खंड डंडे अलख मते जय जय होसी मैकासुर मर्दन राम कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विध्वंसन महक मथे दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदारण उर्द अधे जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम कपर्दन आदवृते डावरू डवंक बवर बवंक भुजा फरंगे तेज परंग लंकुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन्य मर्दन काल सुरंग अष्टाय चमक भूकण दमक

अगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाग पकारण शत प्रहारण साध मते सैति सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलन जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम काल पताल जलन चाचर चमकारन चिच्छुर हारन धूम त्रकार द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे कर्म प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे जय जय होसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंगरू घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शुद्ध सनाहे अगमथाहे एक वृते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद कुमार अगाद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण विचल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल काश अनले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकरण तुन तबे दुग दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तरक वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद नील अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंत रंगण तेज सरे करकसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके केहर लंके आद दंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसुम मथे बारण विलोचन वृतन विमोचन सोच विशोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुखसर नासे सुभ्रे सुभासे दोष ग्रसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद काद उर्धंग घंटका विराज रुणजन भाज्य भ्रम भय भाज्य सुन सुरंग कोकल समलाज किलबिक भाज्य सुखपराजय मधुरंग दुर्जन दल दज्जय मंतन रिज्जय सवैन भजय रोरण जय जय होसी मय कासुर मर्दन चंड चकरदन आदि गुरंग चातरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर पिते धूमराज विजुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विजुंसन सुध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आज उगाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आदनंगी अगाद गते ब्रिड राज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आदृते सुर नर प्रत पारण पद धारण दोष निवारण दोग हरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन विश्व विदन सं श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टाद बाण बोल निबाण संज पनाहण गूढ़ गते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद नाद गाद वृते दुग दो ब्रह्मक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाहे दोष प्रदाहे अर्दल गाहे दोग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आदंते जय जय होसी मय कासुर मर्दन सात प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुन मते अष्टाय चमकण शास्त्र झमकण दामिन दमकण आदवृते डुगडुगी दमंक बाघ बवंक भुजा फुरंक शुद्ध गते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आज उगाद नाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पते दुसारण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे पते उधारे मुंड मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन धूम्र विदुन संग आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चकरदन दानव अर्दन बिडाल मधे सरदार विबरखन दुर्जन धरकन अतुल अमरखन धर्म ध्वजे धूमराज विधुंसन प्रसोनत चुनसन सोम निपाद सोम मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनिल अगाद कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते पसार जदब अभूतन भय अनंत जो कहो जतम त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल भय अभूतन भय दयाल दाता दुरंग दो दोग रह जय नेत नेत सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब आर पार जा को प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों ना से वंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सासुर

विहीन अनभंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र सार, जय जात पात नहीं भेद भरम, जय रंग रूप नहीं एक धर्म, जय शत्रु मित्र दो एक सार, अच्छा स्वरूप अब चल पार, जानी ना जाय जय रूप रे, कह बास ताज कह कौन फे, कह नाम ताज है कमन जाल, जय शत्रु मित्र।

दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत न हरे। दाहत है दु दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे। खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमापद भेद कतेब अभेद उचारे। रोजी ही राज लोग राजक रोग रोहान की रोजी न टारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेक भवान बनाए। देव अदेव खपे अहमे न भेव लख्यो भ्रम सिंह भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान सेव तके कर हाथ न आए। पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद सिंह के श्री पदमापद पाए। आद अनंत अगाध अद्वेक सो भूत भवेक भवान अभय है। अंत विहीन अनातम अदाग अदोग अछेद्र अक्षय है। लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ है। दीन दयाल दयाकर श्री पर सुंदर श्री पद ए है। काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना शोक ना भोग ना भय है। देव ही सने सबोतन नेह व्रक्त गह अच्छा है। जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरे शुद्ध सुंदर श्री पद्मापद ले है। रोगंते अरसोगंते जल जोगंते भांत बचावे। शत्रु अनेक चलाओ दहो तहुत अनेक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दह कर पाप समूह न भेटन पावे। और की बात कहाँ का तो सौ सौ बेट ही के पट बीज बचावे। जज भुजंग सो दानव देव भे तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम काल पताल रसा दल जज भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नी पार प्रवाह को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज सके सब ही कुजिया सुर हार परे हर हाथ ना आवे। नारद से चतर आनंद से रूम नारी से सब हूँ मिल गायो। भेद गदेव ना भेद लगे उस हार परे हर हाथ ना आयो। पाए सके नहीं पार उमापत स्वेद सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को मितो सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान भेद निरपान सब बजहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत हैं अन छेद पुकारे। राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना सोग ना संग तिहारे। आदे अनादे अगाध अभेग अदभेग जपिय तिन्हि कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए वदान महाव्रत धारे। देश प्रयोग कर भेद तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वन्यास करे मुकारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छेत छत्र के धरैया छत्र धारी के छलैया मा सतरन के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया उसान के दिवैया कटैया जम जाल है। जोध के जितैया वृद्ध के मिटैया मा बुद्ध के दिवैया मा मान हुके मान है। ज्ञान हुके गाता मा बुद्धता के दाता देव काल हुके काल मा काल हुके काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय धावे गोर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पवन साधना कितने बादे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिर दिवाने करंदारी कुरेसी जाने। पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मानसो तपस्या करे। जड़वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलते हैं। रो के रोहिले मांग देश के मंगेले पीर बंग सी बुंदेले पापुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चीन बचीन के शीश नी आवे। तिब्बती दयाय दो देह को दलत है। जिन्हें तो है ध्यायो तिने पूरन प्रताप पायो। सर्व धन धा फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरे दानवान को महत गंग धान को अभेद कहियत है। रंग में रगिंग राग रूप में प्रवीण और काउं पे अधीन साध अधीन कहियत है। पाइय अपार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदारे अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पाओ चलता है। चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुखार केते कृष्ण अवतार केते राम कहियत है। केते सस राशि केते सूरज प्रकाशी केते मुंडे अवदासी जो द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यासे प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जज कहियत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताहिते अपार निराधार लहियत है।
पूरन अवतार निराधार है ना परावार पाइये ना पार पे अपार के बखानिया है अद्वै अविनाशी परन पूरन प्रकाशी मां रूप होके राशि है नासी कह के मानिया जंत रहू ना जात जाकी बाप हूं ना माय ताकि पूरन प्रभागी सो छटा कैन मानिया तेज हूं को तंत्र है के राशि को जंत्र है के मोहिनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिया तेज हूं को तर है के राशि को सर है के शुद्धता को घर है के शुद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है के वृक्ता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को गुनिंदा है के खुबी को दिहिंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के सतरन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की वासी है जोग हूं को यंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरन प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के शुद्ध को बास है के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचाए मान को दिवैया जम जाल को कटे है कामना कर है तेज को प्रचंड है अखंड को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये न पार पार अबार हूं को पार जाओ की जल विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हल्लबी ध्यावे पूर्वी न पार पावे आसादे अनास है देवन को देव मा देव हूं को देव है निरंजन अभेव नाद अद्वै अविनाशी है अंजन बहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन कटैया जम जाल के देवन के देव मा देव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया महामहिया बा बाल के राजन के राजा मा साज हूं के सजा मा जोग हूं को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना कर है के बुद्धता को हरे के शुद्धता की शादी के काल है कुचाल के शीर कैसी शीरावत छास कैसी छतरानेर छपा कैसी छव कालिंद्री के कुल के हंसनी सी सिहारम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सेंदरूल के परासी पलाऊ गुण रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ की रति हारी रही मालती सी फूल के फटक सी कलाश कमावगढ़ काशीपुर सी सासी सुरंगावानी के सोई अत है हिम्मा सी हिमालय हराब सी हल्लब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही अत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जो ही अत है गंगा सम गंग धार विकान सी बिलंदाबाद की रतिहारी के उजारी सोई अत है फरासी फिरंगी फरासी सके दो रंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाई अत है भखरी गंधारी गोर गखरी कर दे दाचारी पान के आहारी तेरो नाम ध्याई अत है पूरा पलाऊ काम रूपा कमाऊ सर्व ठौर में विराजे जहां जहां जाई अत है पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी ना कीरति हारी को ना पार पाई अत है तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वै अनास आसन डोल अद्वै आनंद उपमा तो अच्छा सर्व व्यक्त ना जान भाव सर्वा प्रमाद जत मही बंतन प्रफुल शोभा बसन जत प्रडुल बन तन दुरंद खग मृग महान जत प्रफुल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल लहत मोर सिर ढुरै जान मन मत चौर गुजरत कमाल राजक रहीम करना निधान कामल करीम जाता बिलोक तता प्रसो आजान बाह मितोज मोह रोसंग विरत करना निधान जाता प्रभु सुंदर सुजान बंतन महीब जल थल महान जाता प्रसो करना निधान जग मगा तेज

कै भोग गुण एहो होर नाहीं कोए ना को होआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिंदन कर कै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सदगुर सदपुरखा बिना करो गुर पास हम की रे कर्म सदगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हमरी रहरास रहाओ हर जन के बड़ भा

संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए ध्रग जीवै ध्रग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लखया लखास धन धन सत संगत।

जवां काहे रे मंचत वह उदम जा आहर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहा जन पिता लोक सुतवंता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड़ आवे सैकु सा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया

समूह साध संगत जी नूं बेनती है। पहला प्रकाश सेवक जत्थे वल्लों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश गुरपुरब दे खुशी विच अज मिती 7 तरीक तों 11 तरीक तक रोज रात 8 बजे श्री सुखमनी साहब जी दे पाठ किए जाएंगे। सो समूह संगतां नूं बेनती है हाजरियां भरो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

0: प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे,
1: प्रभु के सिमरन दुख जब न से,
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे,
1: प्रभु के सिमरन दुष्मन डरे,
0: प्रभु सिमरत कज बिघन लागे,
1: प्रभु के सिमरन अंधिन जागे,
0: प्रभु के सिमरन भवन व्यापे,
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे,
0: प्रभु का सिमरन साध के संग
1: सरब निदान नानक रंग,
0: प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध,
1: प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान अद्भुत,
0: प्रभु के सिमरन जप तप पूजा,
1: प्रभु के सिमरन विनते दूजा,
0: प्रभु के सिमरन त्रिदिश नानी,
1: प्रभु के सिमरन धर्म मानी,
0: प्रभु के सिमरन होए सो भला,
1: प्रभु के सिमरन सुफल।

0: बुझे,
1: प्रभु के सिमरन सब की सूझे,
0: प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा,
1: प्रभु के सिमरन पूरन आशा,
0: प्रभु के सिमरन मन की मल जाए,
1: अमृत नाम हृदय माहे समाए,
0: प्रभु जी बसे साध की रसना,
1: नानक जन का दास न दसना,
0: प्रभु को सिमरे से धन बनते,
1: प्रभु को सिमरे से पद बनते,
0: प्रभु को सिमरे से जन परवान,
1: प्रभु को सिमरे से पूरक प्रधान,
0: प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे,
1: प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे,
0: प्रभु को सिमरे से सुखवासी,
1: प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी,
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला,
1: नानक मन की मंगे रवाला,
0: प्रभु को सिमरे से परोपकारी,
1: प्रभु को सिमरन ते सत बलहारी,
0: प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे,
1: प्रभु को सिमरन ते सुख बिहावे,
0: प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता,
1: प्रभु को सिमरन ते नाथ जीता,
0: प्रभु को सिमरे तिन नंद घनेरे,
1: प्रभु को सिमरे बसे हर मेरे,
0: तन कृपा ते अंदिन जाग,
1: नानक सिमरन पूरे,
0: प्रभु के सिमरन कारज पूरे,
1: प्रभु के सिमरन कबो न जूरे,
0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभु के सिमरन सह समानी,
0: प्रभु के सिमरन न चल आसन,
1: प्रभु के सिमरन कमल भी।

0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग वेद उपाए,
0: हर सिमरन वैस जति दाते,
1: हर सिमरन नीचा गुण जाते,
0: हर सिमरन दारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन कियो सगल कारा,
1: हर सिमरन

0: जन कोट
1: हर जस कर सन दिन रात हर जन के हर नाम निदान
0: रमजन के नौ दान
1: मन तन रंग रते रंग एके
0: जन का विरत विवेके।

0: नाम के प्रिय सुखदाई
1: कृपा नानक आप लय लाए
0: चंदन कुटुंब सब आया
1: मिथ्या हो में ममता माया
0: राज्यो बंधन माल
1: मिथ्या काम क्रोध निग्रह
0: रत अस्त्य अश्व वस्त्र
1: मिथ्या

0: प्रसाद सुगंध तन लावे
1: इसको सिमरत करम कर पावे
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
2: जय प्याए सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
2: सिमरत सुख बसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ते आए प्यारे

0: भगत करे।
1: जय प्रसाद अबुकन पैरी जय
0: मंत्र सिमरत क्यों आलस की
1: जय। जय प्रसाद अस्त अस्तवारी
0: तिस प्रभु कबुना विसारी।
1: जय प्रसाद बाक मिलक धना।

0: तेरी पत्र है
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: जय प्रसाद सुने करनाद
1: जय प्रसाद देखे बिस्मार
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
2: जय प्रसाद

0: रज करता
1: अष्टपदी
2: साध के संग मुख उज्जल होता
1: साध संग मन सन्नी होता
2: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो
2: साध के संग बुझे प्रभु निरा
1: साध संग

0: साधु के कुर्बान,
1: सबको लुधार साधु के संग शोधन पावे,
0: सबको वरसावे,
1: संग धर्म राय करे सेवा,
2: संग सुबासुर देवा
1: के संग पाप लाए,
2: संग अमृत गुण गाए,
1: संग सर्वदान गम
2: साध के संग सफल जनम,
1: साध के संग नहीं किछ काल, साध के संग लोकत हरे,
0: साध के संग नरक पर हरे,
1: साध के संग इया हुआ सुहेला,
0: साध संग विचरतर मेला,
1: जो इच्छे सो ही फल पावे,
0: साध के संग न बिरता जावे,
1: साध रत बसे,
0: नानक गुरु साध सुन बसे,
1: साध के संग सुनो।

0: ज्ञानी की सब ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी देख जो पुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी के देश अमृत
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान

0: पाइए धर्म
1: नान जिस मिले जिस लिखिया तुर करम
0: मन पार्वन का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: राम किस नदरी आये
1: दंत संतन पाए तिन पाया
0: निकट निकट हर जान
1: सो दास दल गए परवान
0: दास को कृपा करे।

0: कोट पंखी सर पियू पाए,
1: कई कोट पातक बिरक निव जाए,
0: कई कोट पवन पणी बैसंत,
1: कई कोट तेज भूमंडल,
0: कई कोट ससियर सूर नखत,
1: कई कोट देव दानर छत्र।

0: कई कोट की रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जनता
0: कई कोट की चिर जीवे
1: कई कोट की मेर स्वांति में
0: कई कोट जो नर प्रसाद।

0: जाता मिटे अभिमान,
1: सो जन नानक कर परवान,
0: और कर्म करे हो तारे,
1: सब आवे सगले बिरथारे,
0: तपस्या करे अहंकार,
1: नरक सुर

0: सात किया सब सत
1: सुरक्ते सगले उत्पत
0: भावेता करे विस्तार
1: इस भावेता एक कंकार
0: कला लखी नह जाए
1: इस भावे तिस्रे मिलाए
0: कवन निकट कवन कही।

0: गरीब निवाज अंतर जामी सदगुरु सचे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र ताम तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब के सचे पातशाह जी महाराज पहले प्रकार सेवक जथे वलो साध संगत जी वलो सचे पातशाह जी महाराज श्री सुखमनी साहिब श्री चौपी साहिब ते अमृतमय शब्द कीर्तन होया दातार जी बाणी पढ़द्या हुईआं भुलां चुकां दी माफी बख्शनी बड़ी सुनी बाणी सच खंड विच प्रवान करनी बाणी दा महात्म आप जी दे साजियां निवाजियां समूह संगतां दे ताई बख्शना संगतां दे आस मनोरथ पूर्ण करने नाम दान गुरसिखी जन देह रुकता तंदुरुस्तियां बख्शनियां नाम बाणी नाल रखना सीस ते मेरा भरा हथकना सचे पातशाह जी महाराज पहले प्रकाश सेवक जत्थे ते सीस ते मेरा भरा हथकना आप जी दरगर दी चढ़दी कला वी सेवा करन दा बल बख्शना हर मैदान फते करना आप जी दे हजूर आनंद साहिब जी दी अरदास आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देह हाजर है आप जी नू भोग लग्या प्रसाद संगतां नू मिले जो छके सो आप जी दा पावन पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे सुख होवे नाम चित आवे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे त्रबदा भला अज्ञा भय
1: गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुराखी दे जो प्रभु को मिल भोज है वो शब्द मैंने राज करेगा खालसा आखी रहे न कोए पार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो हो वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे गुर भार उतारन हार जाके हाथ में कलगी सोए सी

अंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह अंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।

करास निर्जाओ दाता करता आप तो तुस देवा करै पसाओ तू जानो ये सब सहदेल ऐसे जिंद गवाओ करे आसन लिखो चाओ करे आसन लिखो।